0: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
1: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
2: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
0: डेलिभरीका लागि
2: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
0: टिकापुर कैलाली
3: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772। स्वास्थ्यका लागि पानी।
4: बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
5: मैं नहीं जाई, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
4: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब ही जाय।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे ग्वज आगिलिन अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनाइना उनी ना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए ओ ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

जिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: छिछी फिर चर्पी भर गिल का करना हो का
1: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी
0: फोन नंबर कटा हो तो
1: ली डायल करी 97 6 20 20 3 0 0
0: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा
1: अपनों कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परिकल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे संचालक शेरबहादुर थारू संपर्क नंबर 97 6 20 20 3 0 0 98 6 56 92 0 26

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजय 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपनी हुकन स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उक्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेघाट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मलाप साम्र पात्र और नेपाली पात्र मफी सुन्टी रलवाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से एक वर्ष में राज्य कोष में 14 करोड़ खर्च कानून बनीना सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सुस्त। अछम ऑटो दुर्घटना हुलक एकजना के मृत्यु। प्रधानमंत्री शाहद्वारा भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर में शुभकामना। और कोलम्बिया में भूकंप पर्के मृत्यु होने की संख्या 287 पुगल 400 अभिन्न बेपत्ता। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा गत आर्थिक वर्ष 2082-83 में संचालन सांसद के सेवा सुविधा तलब भत्ता स्वकीय सचिव सवारी साधन तथा ईंधन लगायत के शीर्षक में 14,02,37,000 रूपया खर्च कलवा तर राज्य कोष में 100 करोड़ रूपया खर्च हुए से फे प्रदेश सभा के विधेयकी उपलब्धि बिना कमजोर देखिलवा। प्रदेश कोष तथा लेखा नियंत्रक कार्यालय के तथ्यांक अनुसार उक्त अवधि में प्रदेश सभा जम्मा 200 विधेयक के लिख पारित कलबाट दुनु नया कानून निर्माण सम्बन्धी नैयुक्ति विद्यमान कानून की कुछ व्यवस्था संशोधन करना विधेयक बा। अस्थका एक वर्ष के अवधि में प्रदेश सभा नया अवस्थाधारण और जनता के प्रत्यक्ष सरोकार संबोधन करना कोनो नया कानून बनेना नैसिकलक देखिलबाट प्राण कानून के प्रावधान संशोधन में सीमित हुलक। प्रदेश सभा की विधेयकी भूमिका के ऊपर प्रश्न उठलक। प्रदेश सभा के दोसरो कार्यकाल शुरू हुलक करीब 4 वर्ष पुग्न लगला फे कानून निर्माण के गति अपेक्षाकृत सुस्त बा। प्रदेश सभा सचिवले के सूचना अधिकारी युवराज जैसी के अनुसार दोस्रो कार्यकाल में हालसम 23 विधेयक दर्ता हुआ वह मध्य 16 पारित हो सकल बा तर पारित हुलक 16 विधेयक मध्य 13 विद्यमान कानून संशोधन करना विधेयक क्लिक बा। पूर्णरूप में नया अवधारणा जनमुखी व्यवस्था समेटक 3 विधेयक क्लिक यह अवधि में कानून बनना सफल हुआ। अछाम मंगलसेल नगरपालिका 5 में अटो अनियंत्रित होके सड़क में पटल के एकजना की मृत्यु हुआ। शनिवार बिहान के करीब 11:30 बजे मंगलसेल नगरपालिका 3 लाइमी थाने मसे मंगलसेन तर्फ जैती कलक सुदूरपश्चिम प्रदेश 01-001-6113 नंबर के अटो तर अचानक अनियंत्रित होके सड़क में पटल के प्रहरी जनल बा। दुर्घटना में अटो मस्सवार मंगलसेन नगरपालिका 3 लालछी मनाम बैठना अंदाजी 48 वर्षीय निरप बोगोटी घाटी हुल रहे वहां उपचार के लिए जिला अस्पताल मंगलसेन लगी रहे। बोगोटी के उपचार के क्रम दिन के 1:10 बजे मृत्यु हुलक जिला प्रहरी कार्यालय अछाम दनिलवा। दुर्घटना में संग्न अटो ओ चालक प्रहरी नियंत्रण में रहलवा घटना बारे थप अनुसंधान हुई रह प्रहरी जनलवा। खोज खबर में घरी विश्राम विश्राम पास फेर से भी सुन्त्रे सामुदायिक रेडियो टीका पूरा फिल्म
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ। प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: अहँ हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
3: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव धल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुर म सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा, डिजिटल भिडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित अटो एनालाइजर से सक्कु रगत जाँच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाट जोड्नी सेवा, टुटल हाट जोड्नीमा प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जाँच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा सँग तालिम पाइल स्वास्थ्य कर्मी से क्षयरोग तथा कुष्ठरोग सम्बन्धी सेवा फेदे जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली, गुम्बा रोड, गोलचोक लगह, टिकापुर कैलाली। फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59।
0: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भारतकै 80औं स्वतन्त्रता दिवसकै अवसरमा वहाँकै समकक्ष नरेन्द्र मोदी भारत सरकार तथा भारतीय जनतामा शुभकामना व्यक्त कल्लबाट प्रधानमन्त्री शाह सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत भारतकै स्वतन्त्रता दिवसकै अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदी सहित भारत सरकार र मैत्रीपूर्ण भारतीय जनतामा शुभकामना व्यक्त कल्लबाट वहाँ नेपाल भारतकी बीचरल गहिरो ऐतिहासिक सम्बन्ध जनस्तरकै निकट सम्बन्ध तथा दुई देशबीचकै सहकार्य आगामी दिनमा अभिन्न सुदृढ स्थिति जैनमा विश्वास व्यक्त कलबाट नेपाल भारत बीचकै गहिरो ऐतिहासिक सम्बन्ध जनता बीचकै निकट सम्बन्ध औ सहकार्य आगामी वर्षमा अभिन बलगर भिना जैतिकर्ण प्रधानमन्त्री शाह शुभकामना सन्देशमा कलबाट सरकार जेनजी आन्दोलनकै शहीद परिवार तथा खाइती स्वरोजगार उद्यम 57 लाख रू 50 लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गर्ने व्यवस्था कलबाट अर्थ मन्त्रालय शुक्रबार सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी दोस्रो संशोधन कार्यविधि 2083 जारी कर्ती स्थान अवस्था कलबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 दफा 65 उपदफा 4 देलक अधिकार प्रयोग गर्के मन्त्रालयकै कार्यविधि संशोधन कलक जनेरबाट संशोधित कार्यविधिमा जेएनजी आन्दोलनकै शहीद परिवार तथा घाइते लक्षित स्वरोजगार उद्यम कर्जा पद्धति थप कलबाट सहका कर्जाकै लागि जेएनजी आन्दोलन सहित परिवार हो खाइतीहरू रू 50 लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गरेर सिक्न व्यवस्था कलबाट कार्यविधि अनुसार जेएनजी आन्दोलन सहित परिवार हो खाइते हुलक नेपाल सरकार हो प्रचलित कानून बमोजिम तोकलक निकायमा से प्रमाणित फर्नावा जेएनजी आन्दोलनकै शहीद परिवार हफे आन्दोलनकै शहीद महुलक व्यक्तिकै फे पत्नी छावा छाई बाबा दाई हरिना स्वस्थपल्लबाट शहीद परिवार तथा घाइतीकलाक सहुलियतपूर्ण कर्जा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय घरेलु तथा साना उद्योग सेवा व्यवसाय सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवसाय पर्यटन व्यवसाय उत्पादनमूलक उद्योग स्टार्ट अप उद्यम तथा नेपाल सरकार समय समयमा तोकलक अन्य उत्पादनमूलक तथा रोजगारीमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइसक दिनमा वस्तुसँग सरकार जेएनजी आन्दोलनमा प्रभावित परिवार तथा खाइतिहाँ स्वरोजगार हो उद्यमशीलता मार्फत आर्थिक रूपमा सबल बनेन उद्देश्य सहुलियतपूर्ण कर्जाकै दायरा विस्तार कलबाट खोज खबरमा फेरि विश्राम पाछा फेरि विश्वन्तर विश्राम उदाय रेडियो टिकापुर एफएम
4: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
5: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
4: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
6: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26
8: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
9: भदौ 6 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
8: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोग समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खस्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको खुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
9: डाक्टर आउने दिन भदौ 6 गते पहिलो शनिबार
8: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868800008 र 9825637772
10: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
9: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588008
0: कोलम्बियामा गत सोमबार गैल विनाशकारी भूकम्प पर्के ज्यान गुमेनाकी संख्या 287 पुगल्छन् करिब 400 जना भिन बेपत्ता रहल जनेलाबाट कोलम्बियाकी अधिकारीक र कालियो पेरेरा शहरमा दुई तिहाई सेधीहरू बढ़ी मनेनकी मृत्युलक बतेलोबाट घाइते मध्ये आधा सेधीहरू बढ़ी प्रमुख शहरी केन्द्रमा अरलग जनैती अधिकारीक र पेरेरोमा उद्धार टोली एक क्षतिग्रस्त होटलके भग्नावेश मुनि फसलक चारजनाकी उद्धार करकलाई तैनात रहल बोटिलोबाट सरकारी तथ्याङ्क विपत्ति के परिमाण पुष्टि कलशेफे पश्चिमी कोलम्बियामा हजारौं आवासीय घर विद्यालय तथा स्वास्थ्य सुविधा संघ सार्वजनिक पूर्वाधारमा गम्भीर रूपमा क्षति पुगलक जनलबाट भूकम्प यस क्षेत्रकै पूर्वाधारमा प्रभावित बनाएसँग हजारौं परिवार अस्थायी सुविधामा आश्रय लिन बाध्य परेलक जनलबाट भूकम्प पासाइलक शक्तिशाली प्राकम्प हुकनके श्रृंखलाकी उद्धार तथा राहत कार्य थप जटिल बनेलासँग पहिले नै क्षतिग्रस्त हुलक भवनमा थप जोखिम बढ़ेलक जनेलबाट यी समाचारसँग खोज खबर बराइल जनाइसे पहिले खबरकै मुख्य शीर्षक फेरसेक छु एक वर्षमा राज्य कोष मसे 14 करोड़ खर्च कानून बनिना सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सुस्त अछाममा अटो दुर्घटना हो कि एकजनाकी मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा भारतकै स्वतन्त्रता दिवसकै अवसरमा शुभकामना ओ कोलम्बियामा भूकम्प पर्के मृत्यु हुनेकी संख्या 287 पुगल 400 अभिन बेपत्ता डिटा बक्ला खोज खबर प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद डिटिया बक्ला खोज खबर चाहिँ मैसिता चौधरी विदाई दु एकर पाछ 6 बजे के खोज खबर सुन्न सेक्बी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम सुन्ती रवि राम राम।

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भुवाज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनी ना पट्टा नि पैना त
1: अजि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864841208 ओ 9846239161
2: टिकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था को 10 वार्षिक साधारण सभा होने बारे को सूचना
3: टिकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था को 10 वार्षिक साधारण सभा भदौ 6 गते शनिवार का दिन तपसिल को स्थान र समय में होने भएकोले संपूर्ण प्रतिनिधिहरू उपभोक्ताहरूलाई उपस्थिति का लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ
2: साधारण सभा होने स्थान टिकापुर योगाश्रम को हल ब्लक नंबर 18 समय बिहान 11 बजे
3: टिकापुर साना शहरी खाने पानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था टिकापुर कैलाली फोन नंबर 091 5

0: देता लेली दे
1: एंसल पैक किनली दे
2: जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी ओ 20% सम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक लेली दे कैश फिर तक लेली दे
2: एंसल पैक किनली दे शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग

0: बाबू, ए बाबू, कल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
1: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
1: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिंबू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाग, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: टीकापुर नगर पालिका को आयरन तथा फोलिक एसिड खुवाने कार्यक्रम संबंधी सूचना।
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
4: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लग अपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराईती। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमहे उनका संपर्क करके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: टीकापुर नगर पालिका को ग्रामीण अल्ट्रासाउंड सेवा बारे अत्यंत जरूरी सूचना।
2: टीकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका ओडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा तपसिलको मिति स्थान र समयमा सञ्चालन हुने भएकाले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ।
1: तपसिल
2: वडा नम्बर 4 अस्नेरी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 2 गते,
1: वडा नम्बर 5 मणिकापुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 3 गते,
2: वडा नम्बर 2 विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 4 गते,
1: वडा नम्बर 3 रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 5 गते,
2: वडा नम्बर 1 गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन भदौ 6 गते,
1: वडा नम्बर 1 एकता नगर कार्य समितिको भवन भदौ 7 गते,
2: वडा नम्बर 1 ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र भदौ 8 गते,
1: वडा नम्बर 9 झुङ्गा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 9 गते,
2: वडा नम्बर 6 नारायणपुर स्वास्थ्य चौकी भदौ 10 गते
1: र वडा नम्बर 7 छट्टी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भदौ 11 गते।
2: सबै वडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि।
1: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली।
3: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के वस्त बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बर बर
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कपड़ा से गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: लेता ले लीजिए
1: एंसल पैक लीजिए
2: जहिया फैन जहां फैन पैक खरीद करी 25% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीजिए कैश फिर तक ले लीजिए
2: एंसल पैक लीजिए शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग।

0: जस्तो छैन यार।
1: शहरमा भिड छ मान्छे अकेला, टेन्सन गर्मी ठेलम ठेला, हर कोही जिन्दगी से धकेला, सानो बातमा ठुलो झमेला। इंसानियत सबका मरेला, बूढ़े जवानी के पीछे पड़ेला, ठगी चोरी दिमाग चढ़ेला। पैसा बहुत से बरकत छै न, दो घड़ी को पनि फुर्सत छै न, पैसा छ त सब कुछ ठीक छ, समुन्द्र

0: किलिटे शर्त लागू हुई एनसेल नेपाल के लग
1: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: पेंसिल पैक किन ली थे
1: जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी ओ 20% कम कैश फिर तक एंसिल ऐप में क्लेम करी
2: कैश फिर तक ले ली थे कैश फिर तक ले ली थे
1: एंसिल पैक किन ली थे शर्त लागू हुई एंसिल नेपाल के लग
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़